0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 6:30 इट इज प्रॉब्ली बिट अर्ली टू शो सम ठुमकास, लेकिन इट्स द स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू डे एंड लेट अस किक स्टार्ट द शो.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: थर्सडे की सुबह कैसा फील कर रहे हैं आप? जुमा रात, वी गॉट टू मोर डेज टू गो बिफोर द वीकेंड. एनीथिंग प्लान्ड? आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह है? सम एक्साइटमेंट टू फेस दिस ब्रांड न्यू डे एट वर्क? लेट मी नो, गिव मी अ कॉल 800-1062. एक और काम है जिसके लिए आपको मुझे कॉल करना है, दैट इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट. देयर इज अ सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन टू, मे बी फॉर योर सेल्फ, अपनी या औरों की नींद भगाने के लिए, और डेडिकेट इट that someone special in your life. You can do that, but up until only 7 a.m. so give me a call 800-1062 for coming up in just a while. The Shere Baloch version of Didi from Dhurandhar the Revenge. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जब से झंकार से है दिल के तार में तब से
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: हम और आप पहुंच गए हैं थर्सडे की सुबह पे. इट्स 25th ऑफ जून एंड इट्स 6:33 ऑन द क्लॉक.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: July 1st से शारजा में you'll have to pay for public parking until midnight instead of 10 PM. So that's a new rule in case you are in Sharjah. अगर आप शारजा में काम करते हैं रहते हैं तो please take note कि 1st of July से 12 बजे तक paid parking होगी. Public parking is going to be paid instead of 10 PM. With the 10 PM के बाद it was free, right? But not anymore. And वहाँ पर parking spaces filling up within minutes of paid hours ending, and that is why people had to like drive around the neighborhood for up to 30 minutes, etc. So ये complaints मिल रही थी अथॉरिटीज को, and that is why they have said कि भाई आप इल्लेपो instead of 10, I'm going to put it up until 12. जान से गुजरते हैं, गोल गोल घूमते हैं, लेकिन फिर भी पार्किंग नहीं पाते हैं. That hopefully that is going to end in Sharjah at least. क्या लग रहा है, क्या मूड है थर्सडे की सुबह, क्या सुनना चाहते हैं? Got about half an hour to go in the early morning request. This is the big breakfast with me, Sid. Good morning.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: Your Love, that song is called by Shubh, and this is that hour. You need all the love. 6 to 7 right here on Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: मन कर रहा है कि साथ मिलकर एक ब्रांड न्यू गाना सुने. ऑफकोर्स टुमारो द डे व्हेन वेलकम टू द जंगल इज रिलीजिंग विद पता नहीं कितने बुतेरे स्टार्स हैं उसके अंदर. एवरीबडी इज एनीबडी इन द इंडस्ट्री. इट फील्स लाइक इज गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस वेलकम एक्सेप्ट आलू ले लो. नाना पाटेकर के बिना वेलकम कैसी होगी देखते हैं यार. इट्स या डायरेक्टेड बाय अहमद खान एज वेल. सो चलो साथ मिलकर सुनते हैं एक गाना जो कि कुछ घंटों पहले रिलीज हुआ. इट्स कॉल्ड तेरा पैसा मेरा पैसा. वही चीज जो सारे दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं बट नोबडी एक्चुअली मीन्स इट. लेट्स लिसन टू दिस एंड चेक इट आउट. सी इफ यू लाइक दिस.

0: चल बाहर निकल,
1: यहाँ लड़की देखी शुरू।
2: As you can hear, you figured it out कि अक्षय कुमार is doing a bit of playback as well. उसकी उनकी आवाज़ इस गाने के अंदर, साथ में विक्रम मोंट्रोज, फरहाद रुबाई, मेघा एंड लॉट्स ऑफ नेम्स दैट आई डू नॉट रिकग्नाइज, बट या वेलकम टू जंगल इज कमिंग आउट। अक्षय कुमार सेइंग तेरा पैसा सबका पैसा मेरा पैसा, गिविंग लॉट्स ऑफ हेरा फेरी वाइव्स इन वेलकम टू द जंगल। देखते हैं कि फिल्म कैसी होगी। आई यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? आई गो एंड वॉच इट फर्स्ट डे फर्स्ट शो? आई यू बिग अक्षय कुमार फैन? लेट मी नो इफ देयर इज अ सॉन्ग जो आपको रिक्वेस्ट करना है। 800-1062 इज द नंबर।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: Today's weather update: sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances, and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
5: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
6: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
3: Big 106.2. That's My Song by E. And.

लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: एक दीवाने की दीवानियत से दिल दिल दिल. दिस इज सुनिधि चौहान, अमेजिंग सॉन्ग. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Yep, everybody's talking about the FIFA World Cup that is going on right now. क्या honestly क्या लगता है आपको? I mean, are you one of those people who's down in the drums? क्या यार, मतलब मजा नहीं ले पा रहे उतना जितना कि लेना चाहिए. You know, heading out to the fan zones and all of that because so late in the night here UAE time में बहुत देर रात तक matches होते हैं. 9 o'clock earliest that you can actually go and watch. Yes, selective games ही आप देख पा रहे हैं. But are you like me? You're not complaining at all because anyways मैं highlights देखता. अभी भी मैं highlights ही देख रहा हूँ. But yeah, I mean lots of drama happening and जितने लाइक क्लोज रेंज नहीं लेकिन मिड पिच से गोल्स जितने स्कोर हो रहे हैं इट्स क्वाइट अमेजिंग है. सो इन केस यू आर फुटबॉल फैन लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्कोर्स व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग, स्विट्जरलैंड बीट कनाडा 2-1, कोलंबिया बीट डीआर कांगो, आई एम सपोर्टिंग कांगो, दे बीट देम 1-0, एंड आज सुबह बॉस्निया हर्सेगोविना दे बीट कतार 3-1, एंड राइट नाउ फ्यू मिनट्स अगो साउथ अफ्रीका बीट साउथ कोरिया 1-0. And Mexico got past Czechia 3-0. इससे पहले आज कल रात को ब्राजील बीट स्कॉटलैंड 3-0 एंड मोरक्को वर्सेस हेती का जो गेम था दैट वाज द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द पास्ट 24 आवर्स. 4-2 इन फेवर ऑफ मोरक्को व्हेन दे वर ट्रेलिंग 2-1 एट हाफ टाइम. सो इट्स ऑल हैपनिंग एट द फीफा वर्ल्ड कप. हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन दिस टाइम? विकी विद्या का वो वाला वीडियो से मेरे महबूब कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: 6.2. The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: InsuranceMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: मॉर्निंग 7:13 और कल सुनते हैं कि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बारिश हो गई, बरसात हो गई एज एक्सपेक्टेड बाय द एनसीएम. आज और कल सुबह मैक्स तक इट्स गोइंग बी अनस्टेबल वेदर. एक्सपेक्ट सम रेन शावर्स, कभी कभी कभी मध्यम, कभी काफी तेज बारिश होने के चांसेस हैं आज ऑन दिस थर्सडे मॉर्निंग. 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 70%, हाईज ऑफ 36, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 722 on the clock, and this is the kind of research that I'd pay scientists to do.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: और अतरंगी रिसर्च आती रहती है, पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी होता रहता है यार, मेक्स अस वंडर कि यार ये रिसर्च को फंड कौन करता है. लेकिन ये जो रिसर्च आज सुबह की मेरे कानों तक पहुंची है, ये दिस इज अमेजिंग. ऑलराइट, आर यू वन ऑफ दोस पीपल हु सफर फ्रॉम मोशन सिकनेस, कार सिकनेस? गाड़ी में बैठते हैं तो आपको उबकी आने लगती है. देन साइंटिस्ट हैव सेड दैट दे फाउंड अ सिंपल ट्रिक टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम फीलिंग कार सिक. नाउ लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट. इट इज समथिंग टू डू विद व्हाट यू डूइंग राइट नाउ. जो आप अभी कर रहे हैं, दैट इज व्हाट साइंटिस्ट हैव सेड इज द आंसर. द सिंपल, वेरी ऑर्गेनिक, नॉन यू डोंट हैव टू टेक एनी ड्रग्स फॉर इट. जो मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन लिए बिना वो क्या चीज है जो आपको करनी होती है इफ यू फीलिंग कार सिक. That's what scientists have proven through science. Nausea, dizziness वगैरह से छुटकारा पाने के लिए usually people say के you know cut down screen time, avoid reading, and then you know antihistamines, medicines वगैरह. लेकिन बिना medicine या बिना ये सब करे, what do you think it could be that scientists have proven through science के करना चाहिए if you don't want to get car sick, right? Clue for you, it's something to do with what you're doing right now. If you figure it out, give me a call, 800-1062 par. It's giving me an I told

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: The beat of Bollywood. Thinking about looking and feeling your best? At Zulekha Hospital, our aesthetic and plastic surgery specialists deliver discreet, world-class care in facial refinement, body contouring, and cosmetic enhancement using advanced techniques designed to enhance your natural features with precision and balance, with results that look natural and feel like you. Zulekha Hospital, where confidence feels natural. Call 600-52442 to book your appointment.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money यूज करो।
1: क्या? सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड conditions अप्लाई।
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
7: It's game on with Big Ticket.
8: A guaranteed 25 million dirham prize.
7: 5 winners of 1 million dirhams each.
8: Plus weekly draws.
7: Buy now at bigticket.ae.
9: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: अनस्टेबल वेदर कल काफी मिला, स्पेशली इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री अराउंड अलेन, देयर वाज स्पेशली अ लॉट ऑफ रेनफॉल यस्टरडे। आज से लेकर कल सुबह तक भी अनस्टेबल वेदर होगा, दैट्स व्हाट द एनसीएम इज सेइंग। सो बी केयरफुल, सावधान रहें, सतर्क रहें, दैट्स व्हाट द एनसीएम इज सेइंग। पार्टली सनी स्टार्ट टू दिस थर्सडे मॉर्निंग, 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। ह्यूमिडिटी एट हाई 62%, हाई टू 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2। सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2 क्रेजी।

0: ऑलमोस्ट क्लोजिंग इन ऑन 40 crores. दैट्स अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट दिस फिल्म इज डन प्योरली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. शुरू में जब रिलीज हुई थी लग रहा था कि यार नहीं, इतनी नहीं चलेगी, बट धीरे धीरे इट्स कैचिंग ऑन. द परफॉर्मेंसेज आर बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड इम्तियाज अली हैज थैंक्ड हिज फैंस एंड ऑल द मूवी गोअर्स टू एक्चुअली सपोर्ट हिज फिल्म.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Yes, show is brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. That's made in Italy. You can cover your gray hair in just 5 minutes. All thanks to Henna Speedy Easy Hair Color. It's ammonia-free formula enriched with henna extract and argan oil. Gives you vibrant, natural-looking color. Works beautifully even on thick hair. Delivering easy, even application. The Easy Comb Applicator makes coloring as simple as combing your hair. Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: Prem bhai,
3: are gira to.

0: Bandhu 2.0 from Cocktail 2. एंड यारी दोस्ती बस थोड़ी देर होने वाली है, उसके बाद कॉन्टेस्ट ही कॉन्टेस्ट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द टू पीपल ऑन द फोन लाइन कॉन्फ्रेंस में अगेंस्ट ईच अदर प्लेइंग द बिग समर सरप्राइजेस वेकेशन वर्ड कॉन्टेस्ट.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: 30 सेकंड होंगे आपके पास, 30 सेकंड्स घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाएगी. एंड इन दो 30 सेकंड्स आई एम गिव यू सम फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स दैट हैव सम कनेक्शन टू अ वेकेशन, अ छुट्टी, अ स्टेकेशन, यानी कि इट कुड बी अ डेस्टिनेशन, इट कुड बी समथिंग यू पैक इन अ सूटकेस और व्हाटएवर. इफ यू परफॉर्म बेटर देन द अदर पर्सन ऑन द फोन लाइन इन कॉन्फ्रेंस प्लेइंग अगेंस्ट यू, यू कुड गेट योर नेम इनटू द ड्रॉ टू विन एन अमेजिंग स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड इन रस अल खैमा, प्लस ऑन द स्पॉट टू वॉक्स टिकट्स एंड एन F&B वाउचर एज वेल. सो व्हाट्सएप करते रहो 0543091062 पर. क्या लिख के भेजना है? BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, BSS स्पेस योर नेम, सेंड इट टू 0543091062. आज सुबह का आखिरी बोर्डिंग कॉल.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सिर्फ ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2. The beat of Bollywood.
3: It's game on with Big Ticket.
4: A guaranteed 25 million dirham prize.
3: 5 winners of 1 million dirhams each.
4: Plus weekly draws.
3: Buy now at bigticket.ie.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
7: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
8: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
9: Insurers Market.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
10: Wow, your hair color looks stunning.
11: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
10: Yeah, right.
11: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
10: Really?
11: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
10: I'm buying it right now.
11: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: 9:12 मिनट ऑन दिस थर्सडे की सुबह एंड दिस समर बिग 106.2 इज गिविंग यू द अल्टीमेट स्टेके ऑन बिग समर सरप्राइजेस प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमायरेड रसल खेमा गेट रेडी टू विन अस फैमिली स्टेकेशन एट द स्टनिंग रिक्सॉस अलमायरेड इन रसल खेमा परफेक्ट टू रिलैक्स अनवाइंड एंड मेक मेमोरीज
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: आई गॉट द टू कंटेस्टेंट्स रेडी विद मी ऑन द फोन लाइन लेट्स से गुड मॉर्निंग सबसे पहले टू आर्यन
2: Good morning. How are you?
0: Very, very good. आप कैसे हैं यार? You sounding nice and bright.
2: Oh, अभी energy इतनी boost हो गई है कि बात जाना हो.
0: Very good. Energy को थोड़ा conserve करके रखो, because you're gonna need that against the contestant who's playing against you on the phone line. Got Horace. Good morning.
3: Good morning, Sid. Good morning, Aryan. How are you?
2: Good. How are you?
0: बहुत प्याराना लगता है. My God. दोस्ती बस यहीं तक. अच्छा, Horace, क्या काम करते हो आप?
3: I work for healthcare industry.
0: And Aryan, how about you?
2: I'm a logistics professional. I work with an IT company.
0: भाई मतलब रोज कोई ना कोई logistics का आ रहा है मेरे शो पे यार क्या क्या what is this like a it's become a logistics magnet. But चलो which of you is more in need of a staycation we'll find out because that's what you got to do that's what is up for grabs and इतना ही नहीं डेली प्राइजेस भी आपके पास जीतने का मौका 500 दिरहम के प्राइजेस इंक्लूडिंग मूवी टिकट्स एफएमडी वाउचर एवरी सिंगल डे दैट्स व्हाट द बिग समर सरप्राइजेस इज ऑल अबाउट ऑलराइट सो आर यू गाइस रेडी
3: यस
0: लेट मी जस्ट टेल यू द रूल्स वंस अगेन 30 सेकंड्स आपको मैं दूंगा ऑलराइट इन दोस 30 सेकंड्स आई एम गोइंग टू गिव यू सम फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स ठीक है दीज वर्ड्स हैव वन थिंग इन कॉमन दे हैव समथिंग टू डू विद अ छुट्टी अ वेकेशन इट कुड बी अ डेस्टिनेशन इट कुड बी समथिंग दैट यू पैक इन अ सूटकेस क्लियर अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है आपको शाउट करना है बिग एंड देन योर नेम ऑलराइट सो Horace इफ यू थिंक यू नो द आंसर यू गॉट अ शाउट बिग Horace एंड द सेम अप्लाइज टू यू
3: आर्यन
2: आर्यन
0: क्या चल सिर्फ आर्यन नहीं बोलना भाई
2: बिग आर्यन यस
0: थोड़ी चुस्ती दिखाओ थोड़ी फुर्ती दिखाओ आर यू रेडी गाइज
3: रेडी
0: एनी डाउट्स आस्क मी नाउ
2: Nothing.
0: All clear? Aryan Horace?
3: Yes.
2: Yes.
0: चलो 30 seconds आपके मैं शुरू करता हूँ अब The first word is B dash L dash. It's a destination. B dash L dash. Horace?
3: Bali.
0: Bali is the correct answer. All right. The next one. B O dash T. B-O-T.
2: Big Aryan. Boat.
0: Boat is the correct answer. All right. And now the tiebreaker. Are you guys ready?
2: Yes.
0: W-E. W-E.
2: Big Aryan. Want.
0: Kya?
2: Want.
0: I know you want, but... That's not the correct answer. Horace, if you get this right, your name goes into the draw. W-E. Tick, tick one. Tick, tick two. Tick, tick three. The correct answer is actually a wave. I have to give you one more tiebreaker. Are you guys ready?
3: Ready.
2: Yes.
0: Okay. M-LD-V-. It's a destination.
2: Maldives.
0: No. Big Aryan.
2: Maldives
0: is correct. And Aryan ne last ball pe super over mein chakka maar ke is baazi ko kar liya hai baat. Kya baat hai Aryan? Kaante ki takkar, photo finish. Oh my God, Horace, you were so close. I think you knew the correct answer, lekin buzzer dabane mein aapne bas thodi si chook kar li yaar. Horace.
3: It's okay.
0: But very well played. Very well played. Yeah, maza aa gaya.
3: Congratulations.
0: I know, मतलब दिल पे पत्थर रखे ऐसे ही साउंड करते हैं कांग्रेचुलेशंस आर्यन लेकिन Horace थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट एंड यू कैन कीप व्हाट्सएपिंग ऑन 0543091062 ऑलराइट
3: थैंक यू नाइस स्पीकिंग टू यू
0: ऑलराइट आर्यन कांग्रेचुलेशंस
2: थैंक यू सो मच
0: कैसा फील कर रहे हो इस वक्त यार
2: ऐसा पेट में गुदगुदी हो रही है
0: पेट में गुदगुदी तो होनी चाहिए बिकॉज एक एफएनबी वाउचर आपने जीत लिया ऑन द स्पॉट प्लस यू वन टू वॉक्स टिकट्स एंड आपका नाम ड्रॉ के अंदर चला गया फॉर दिस वंडरफुल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरेड अगर स्टेकेशन जीते तो किसको लेके जाओगे जिसको लेके जाओगे साथ में है
2: नहीं, एज ऑफ नाउ तो अकेला हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली फैमिली के साथ ही जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं।
0: लेकिन मुझे लग रहा था कि जो जवाब दे रहे थे वो साइड में somebody sitting next to you, ऐसा नहीं था? Was it next to Hurez or what?
2: I think it was next to Hurez. I travel from Sharjah to Dubai daily, up and down, और अकेला आना जाना is like a big time headache.
0: नहीं नहीं यार, अकेले कहाँ हो, इतनी सारी और गाड़ियाँ हैं, just roll down your windows and you can just say hi to them. There's so many people, you know, in the same predicament as you are. But चलो आर्यन, congratulations. We've all got our fingers and toes and toenails all crossed for you कि जब draw हो, आप ही का नाम draw में से निकले. But in the meanwhile, enjoy the tickets and the F&B voucher as well. Thank you so much. Absolute pleasure talking to you.
2: Same here. Thank you so much.
0: That is Aryan, हमारे आज के draw entrant है. He's got his name into the draw and he'll be hoping that he's the winner of this contest. The big summer surprises made possible by our presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almirid, Russell Khema. Also, don't forget that tomorrow, एक बार फिर कल सुबह, I'm going to be playing this wonderful game at the same time, जहाँ पर one more of you is going to get their names into the draw. एक और नाम shortlist होने वाला है in the lucky draw and also win movie tickets and an F&B voucher.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में. 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
8: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: दिन कर रहा हो, हवा तेज होने वाली, आज टोपी संभाल कर. ऑल्सो बारिश होने के चांसेस है. कल ईस्टर्न रीजन्स में स्पेशली अलेन में काफी अनस्टेबल वेदर था. आज दुबई, शारजा, अबूधाबी, मोर टूवर्ड द वेस्ट ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वेदर, सो बी प्रिपेयर्ड. टेम्परेचर वाइज 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. ह्यूमिडिटी एट अ हाई 62%, हाईज ऑफ 36, लोज ऑफ 32 डिग्रीज.
8: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by Insurance.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Morning is 9:27 on the clock. It's time to play the Big Bollywood Quiz. Isme roz ki tarah aapke paas mauka to win an amazing couple open movie tickets. Jaakar aap koi bhi movie dekh sakte hain at any time of your choosing. Itna zyada freedom aapko aur kaun deta hai yaar? Hum dete hain. Big Bollywood Quiz mein it's time to celebrate a Bollywood birthday. Aaj kaun si very famous Bollywood actress ka janmdin hai, birthday hai? Ye aapko unka dialogue sunke मुझे बताना है. शी वॉज अ पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द 90s का मोस्ट ड्रामेटिक फिल्म्स, ड्रामेटिक कॉमेडी फिल्म्स. हर दूसरी फिल्म में ये होती थी. दैट्स अ क्लू फॉर यू एंड लिसन टू दिस हाईली ड्रामेटिक डायलॉग.
2: तुम अगर शराफत की हद पार करके दूसरों की इज्जत रौन सकते हो तो आज हम भी खौफ की हद तोड़कर तुम्हारी दहशत का सामना कर.
1: यार कितना 90s डायलॉग है यार. ये तो ये किसकी आवाज़ है अगर आपको पता है? गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पर. आज 25th ऑफ जून इज विच बॉलीवुड एक्ट्रेसेस बर्थडे.
2: तुम अगर शराफत की हद पार करके दूसरों की इज्जत रौन सकते हो तो आज हम भी खौफ की हद तोड़कर तुम्हारी दहशत का सामना कर.
1: फेमस बॉलीवुड फैमिली, उसमें बड़ी बहन है ये एंड शी इज रिसेंटली डन अ शो कॉल्ड ब्राउन जिसकी काफी तारीफ है. सो इफ यू नो हु आई एम talking about, then give me a call 800-1062 per to win two open movie tickets. Big. Woo!
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई. एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना?
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
3: इसी बात पे तुझे जादू की झप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
6: Mugambo, खुश हुआ.
7: फिलहाल हम खेलेंगे 5-second rule. आपको मिलेंगे 5 seconds. मैं आपको कुछ categories दूंगी. यहाँ पे जो है अपना वो serious, mysterious side जो है side पे रखना. फटाफट खेलने वाला game है, ठीक है? तीन चीजें जो green color की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं.
8: Apple, pear,
7: okay,
8: और मटर.
7: Not bad. Quickly tell me तीन ऐसी compliments जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
8: I like you.
7: अरे तुम्हारा
8: time
7: नहीं
8: शुरू. Your eyes are beautiful.
7: Time नहीं शुरू होने दिया. ये मैं कह रही हूँ, ये लड़का player है, ये लड़का player है. एक second नहीं लगा है. तीन ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो. देखा, अब नहीं बताएगा. ये पोल नहीं खुलने वाले हैं. ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It's 9:31 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. यहाँ पर आपको हल्का बिल्कुल traffic मिलने वाला है. E11 पर going towards Banias, Mafraq Industrial Area में and a bit of congestion Musaffa Industrial as well. E30 going towards Rabdan. Nothing major to report from the capital. Then there is 311 E11. Sharjah से दुबई जाता हुआ traffic रोज की तरह आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर. 3-4 मिनट की देर 611 Emirates Road पर भी heading south going towards Al Awir. आज northbound traffic आपको मिलेगा मोहेसना में. And this is going towards Mohisna 1. Alkises ki taraf jata hua ye traffic aapko milega. So be careful on 311. Then there is 44 jahan par the usual D3 going towards business pe. You'll find 3 se 4 minute ki der.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: Are go hai kya?
10: Yeah.
11: Kaategi kya?

0: 5 से 7 मिनट की देर एंड देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन एट इंडस्ट्रियल एरिया 6 S112 पर गोइंग ईस्ट एंड वेस्ट स्पेशली टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा यू विल फाइंड कंजेशन 6-11 पर 2-3 मिनट की देर रह गई है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर from Al-Khabanid when there is 44 Al-Khail Road per going towards Business Bay as usual you'll find wahi 2 se 3 minute ki der and the junction of 311 and 44 at JVT also aapko milegi 3 se 4 minute ki der
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month big 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Ready, throw! Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
1: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड शारजा की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रैफिक वहां पर मिल सकता है. इफ़ यू आर क्रॉसिंग तवार 4 वहां पे आपको थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक मिल जाएगा. एक 5 से 6 मिनट का बस डिले है वहां पे. E44 रासल खोर रोड आपको इंडस्ट्रियल एरिया 1 और 2 दोनों के पास बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा एटलीस्ट फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स. E11 शेख जायद रोड DIFC के पास जावील सेकंड के पास इनफैक्ट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है. दिस इज गोइंग टूवर्ड्स D86 मुस्तकबल स्ट्रीट इन जावील 2. हैवी ट्रैफिक ओवर देयर, अबाउट एन 8 मिनट डिले ऑन दैट रोड. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ।
5: फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, आपको मिलेंगे 5 सेकंड। मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी, यहाँ पे जो है अपना वो सीरियस मिस्टीरियस साइड जो है साइड पे रखना, फटाफट खेलने वाला गेम है, ठीक है? तीन चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं।
6: एप्पल, पियर,
5: ओके,
6: और मटर।
5: नॉट बैड। क्विकली टेल मी तीन ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
6: I like you,
5: अरे
6: I like you, your eyes are beautiful.
5: टाइम ही नहीं शुरू होने दिया, मैं कह रही हूँ ये लड़का प्लेयर है, ये लड़का प्लेयर है। एक सेकंड नहीं लगा है। तीन ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो। देखा, अब नहीं बताएगा, ये पोल नहीं खुलने वाले हैं। ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में।
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: ये है Zohra on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
5: 36 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 54% पे, हाईज आज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, दैट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग। लोज विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 32 लेटर टुनाइट।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Yes, that's right. You're with me, Zohra, on The Big Mix. I keep you company all the way until 2. Filhal, main baat kar rahi hoon about some interesting trailers, interesting teasers jo humne dekhe hain. And I think this is something that you really need to go check out immediately. Because देखो यार, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं दैट आर सो पॉपुलर कि उसका आपको यू नो पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो हर कोई बात कर रहा होता है, इंस्टाग्राम पे दिख जाता है एंड यू जस्ट फिगर आउट. बट सम थिंग्स जस्ट ले लो, राइट? एंड यू डोंट रियली नो अंटिल समवन रियली कम्स एंड टेल्स यू एंड यू फाइंड आउट सम हाउ. तो ये इसका भी जो ट्रेलर है ना, ये मुझे पता नहीं था कब रिलीज़ हुआ, कौन है, क्या है. एंड देन आई सॉ पोस्ट दिस मॉर्निंग वेयर हॉलीवुड डायरेक्टर जैक स्नाइडर वॉज ऑल यू नो लाइक टॉकिंग इन ऑ ऑफ द ट्रेलर, प्रेजिंग द ट्रेलर एंड हाउ सिनेमैटिकली इट्स बिन शॉट. एंड आई वाले यार, अगर हॉलीवुड तक पहुंचा है तो मतलब देखना पड़ेगा यार, बड़ी बात लग रही है. इट्स कॉल्ड बेबी डू डाई डू. हाँ, ये शार्क डू डू डू डू याद आ गया मुझे, बट इट्स बेबी डू डाई डू. एंड इसमें हुमा कुरेशी है इन द लीड, उनके साथ रचित है, उनके साथ चंकी पांडे भी है इन द मूवी. द ट्रेलर दैट आई सॉ, ही प्लेज अ सीरियस रोल एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू इमेजिन चंकी पांडे इन अ सीरियस रोल, यू नो, स्पेशली बिकॉज वो पिक्चर्स, वो लाइन सारी याद आ जाती है, आखिरी पास्ता एंड ऑल. बट इट्स रियली गुड. इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय हर ब्रदर साकिब Salim, and she plays the role of a deaf and mute hit woman. That alone is so exciting, right? Because hitman wagaira ke upar movies bahut sare bane hain, but hamari pehli hit woman uske upar hi movie bani hai, who is also deaf and mute. I think that itself is a great hook to get you excited and interested in the movie. But more than that, aajkal mujhe aisi movies ka sound design dekhne mein aur sunne mein bahut maza aata hai, especially after Dhurandhar. You know ki sound plays a very very important part, right? Agar aap accurate sahi tarike ka music laga do piche, to you know ki us scene ka 10 times impact badh jata hai. Isme bhi the sound design is so good. I'm just going through, you know, credits. Yahan pe sound designer hai apparently Shantanu, and I think he's done a very very गुड जॉब. तो मैं एक छोटा सा पार्ट सुना रही हूँ आपको, जहाँ पे पुलिस जो है इनका सामना हो जाता है हुमा कुरेशी के कैरेक्टर से, एंड आस्किंग हर व्हाट हर नेम इज. ऑब्वियसली शी इज डेफ एंड म्यूट एंड कांट टॉक, सो दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन गोज.
2: नाम क्या है?
3: नाम नाम
2: बच्ची.
4: अरे मैडम, वो डम शरा जो इंग्लिश इंग्लिश
2: बेबी.
5: अगला स्टेशन डेस्टिनेशन बंदी फुल फायर, ना सुनेगी ना बोलेगी खूनी ऑन हायर.
1: Full fire, khuni on higher. Love it, love it, love the sound design, love whoever's come up with this composition. It is insane. And I think overall is trailer ki packaging itne achhi tarike se ki hai that it's enough to sell you the movie. And you know for a fact ki jab ye movie aane wali hai, you are 10 on 10 going to go watch it. So if you've not checked out the trailer, do go check it out. Baby do die do, isme end mein iska translation aata hai, which is basically baby kar mar kar, which I'm assuming means ki mar kar bhi kar, like jitna ho sake waise kar. So I think that's pretty cool. Yeah, go check it out, it's on YouTube. Baby do die do, ye main shark do do do do bolne lag jaungi is movie ko leke.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
2: insurancemarket.ae
1: Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
1: ये सुनो,
4: It has been stressful working for 15-16 hours a day. Not easy for anyone, and I'm sure my other logistics competitors or even colleagues listening, they would know the pain that they have gone through.
5: Yeah.
4: Getting better slowly and steadily. Yes.
5: Yeah. सबके सर से ना थोड़े-थोड़े बाल कम हो गए हैं over the past 3-4 months. So yeah, round of applause for all the people in logistics. Yeah. For this, sometimes you gotta just stay your ground, right? You gotta just stay your ground, and things will kind of get back to being logical in logisticals, right? So अविनाश, ऑन दैट नोट लेट गेट डाउन टू बिजनेस। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है आपकी लाइफ में, कामकाज में, तो व्हाट इज योर गो टू? डू यू हैव लाइक अ काइंड ऑफ जॉनर ऑफ मूवीज दैट यू वॉच, और व्हाट इज द सीन?
4: आई स्टिक टू द ओल्ड स्कूल वंस। आई लाइक स्टिक टू हेरा फेरी इज वन ऑफ माय गो टू मूवीज। आई गो टू दिस ऑकवर्ड कॉमेडी व्हिच इज दिस आवारा पागल दीवाना। आई लव दैट सीन्स ऑफ अक्षय कुमार एंड अफताब, इट्स स्ट्रेस बस्टर्स फॉर मी।
5: तभी आपने बिल्कुल सही मौके पे छक्का मारा है, राइट? आपने जीते दो ओपन मूवी टिकट्स। अब नाउ इट इज अप टू यू, कोई भी मूवी जाकर देखो।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
6: ट्रैफिक हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड हेडिंग टुवर्ड्स शारजा। लाइट ट्रैफिक आपको मिलेगा मर्डर सिटी सेंटर की तरफ जाते हुए, 5-6 मिनट का वहां पर डिले। S12 शारजा रिंग रोड की तरफ इनफैक्ट थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक है, अबाउट 10-12 मिनट डिले ऑन दैट रोड। बनियास स्ट्रीट पर अगर आप है D85, वहां पे भी मोटर ट्रैफिक आपको मिल सकता है। थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक ऑन D86 मुस्तकबल स्ट्रीट। उसके अलावा E44 रासल खोर रोड पर अगर आप है अलखेर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे D3 जंक्शन के पास लाइट ट्रैफिक है, एटलीस्ट अबाउट 6 मिनट डिले ऑन दैट रोड। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट लेट अस नो 4305
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2 Big Woo! Big 106.2 the beat of Bollywood. Big 106.2 Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 36 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 55% पर है. लोज आ जाएंगे सिर्फ 32 तक. यू विद मी ज़ोरा ऑन द बिग मिक्स.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2. बिग 106.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
3: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Listen to her every day.
4: Mugembo! खुश हुआ।
5: फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी, यहाँ पे जो है अपना वो सीरियस मिस्टीरियस साइड जो है साइड पे रखना, फटाफट खेलने वाला गेम है, ठीक है। तीन चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं।
6: एप्पल, पियर,
5: ओके,
6: और मटर।
5: नॉट बैड। क्विकली टेल मी तीन ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, just say
6: I like you.
5: अरे तुम्हें
6: like
5: time
6: you, your eyes are beautiful.
5: time नहीं शुरू होने दिया, ये मैं कह रही हूँ, ये लड़का player है, ये लड़का player है। एक second नहीं लगा है। तीन ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो। देखा, अब नहीं बताएगा, ये पोल नहीं खुलने वाले हैं, ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में।
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक हाल फिलहाल, अगर आप है E311 शेख मोहम्मद जायद रोड लेकर शारजा की तरफ जा रहे हैं, S12 शारजा रिंग रोड के पास आपको मिलेगा वेरी वेरी हैवी ट्रैफिक। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम राशिदा मेट्रो स्टेशन इटसेल्फ, वहां से ही काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक गोइंग ऑल द वे क्रॉसिंग D97 इज वेल। सो D93 के पास जो है एतिसलात अकेडमी के पास एक मेजर कार एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये 15-18 मिनट का आपको डिले मिल सकता है। उसके अलावा थोड़ा ट्रैफिक है D83 रिबात स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास, वहां पे भी एक कार एक्सीडेंट की वजह से आपको मिलेगा कम से कम 10 मिनट का डिले। E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टू अजनादा 1 खबेसी के पास भी लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक, अबाउट 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन 4305।
1: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूं।
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: मैं जा रही हूँ स्टूडियो में से, 2 बजने को आए हैं. दैट्स माय टाइम टू मेक अ मूव. उज्जवल इज गोना कीप यू कंपनी अप नेक्स्ट विद द बिग लाइफ. मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, यू कैन गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ज़ोहरा अमीन इज माय हैंडल ओवर देयर. आई नाउ सी यू टुमारो मॉर्निंग व्हिच इज ऑन अ फ्राइडे, सो दैट वीकेंड हम साथ में मना सकें. दिस इज द बिग मिक्स. आई विल सी यू 10 से 2 के बीच टुमारो. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द पीर ऑफ बॉलीवुड.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो.
2: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2 The Beat

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: I don't know, after such a long time I've heard this track. Sunita Rao ki awaaz mein the track is Pari Hoon Main Aapke Saath. Big 106.2 pe main Pari Para. Jo bhi aap kaho. Ya phir...
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: To Adapra. मेरा नाम है उज्जवल खन्ना एंड ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट फूड राइट नाउ. लंच के टाइम पे आज मैं नाश्ते की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि नाश्ता हमेशा या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है या बहुत सिंपल होता है ना. दुनिया के लिए ब्रेड टोस्ट बटर बस भागो फटाफट काम पे, बट सैटरडे संडे का जो नाश्ता होता है ना, बड़ा इत्मीनानियत से करना चाहिए. और इत्मीनानियत से जब हम करते हैं तो हमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट याद आता है. एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश ब्रेकफास्ट का ये बहुत सॉलिड आइटम विच इज़ लव्ड बाय लिटरली एवरीवन. चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, एवरीवन लव्स दिस. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इन माय फूड ट्रेल रिडल, आई एम पोर्ड ऑन अ ग्रिडल फ्लिप्ड हाई इन द एयर, अ सॉफ्ट फ्लफी सर्कल बियॉन्ड ऑल कंपेयर. Stack me up high, let the maple juice flow with a pat of rich butter to make my face glow. Which is this item that I'm talking about? I'm poured on a griddle, flipped high in the air, a soft fluffy circle beyond all compare. Stack me up high, let the maple juice flow with a pat of rich butter to make my face glow. Bina maple syrup ke to bilkul bekar lagta hai. And saath mein agar isme aap chocolate infuse kar do to aur bhi zyada tasty. 800-1062 blueberries too. 800-1062 is my toll free number, which is 800-1062. I repeat, 800-1062. That's my toll free number. Darling, right now as I give you Mickey McCleary and the track is Koya Koya Chan. I love the punk voice and tonality in this one. Take it away. Aapke saath until 5, this is The Big Life. Oh,

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ

0: शफकत तुम्हारा तली की आवाज बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। आंखों के सागर तो फूट फूट के निकलते हैं जब आप देखते हो अपने सामने। थैंक यू सो मच। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, बट यू नो माय सन लाइक्स इट, माय वाइफ रियली लाइक्स इट, एंड दे डू इट लाइक रियली प्रॉपरली। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? फूड ट्रेल्स में आज इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, एंड दिस इज सो एक्सोटिक, सो नाइस, एंड ऑफ कोर्स यू स्पेंड अबाउट 70-80 bucks इफ यू गो आउट एंड हैव दिस। हालांकि घर में बहुत सस्ते दाम में मिल सकता है, बन सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है आपको।
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ
0: And also it doesn't take a lot of time actually. जो भी अमेरिकन ब्रेकफास्ट होता है, जो भी अमेरिकन क्विजींस होती है, वो ज्यादा समय लेती नहीं है, बिकॉज अमेरिकन के पास शुरू से ही टाइम नहीं था जिंदगी में। एंड यू नो दे फिगर आउट the most easiest things, and this is one of them. I'm poured on a griddle, flipped high in the air, a soft fluffy circle beyond all compare. Stack me up high, let the maple juice flow with a pat of rich butter to make my face glow. What am I talking about? And the correct answer is pancake. And a pine cake. This is so nice and so tasty, and if you can eat a stack of four, oh, kudos to you. Bhagyashree, thank you very much for your answer. Well, talking about pancakes, agar aap blueberry dalte hain, chocolate dalte hain, makes it even more exotic. Vanilla aap essence dalte hain aur bhi zyada acha lagta hai, lekin maple syrup ke bagair you cannot have pancakes. And if you've got any Canadian friends jo aa rahe hain Canada se towards Dubai, please tell them to get a bottle for yourself and maybe, you know, for me as well. Baat karun agar maple syrup aur pancakes ke, they go back really long to the Greeks and to the Romans, middle ages mein Europe mein introduce hua, uske baad phir, you know, it came to the new world. And ये जो फ्लफीनेस है, आई बेग यू पार्डन, ये जो फ्लफीनेस है, ये जो बटर मिल्क पैनकेक्स हैं, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स में आए, एंड देन ऑफ कोर्स दे केप्ट एडिंग मोर फ्लेवर्स टू इट। बट बाय एंड फार आई थिंक इट शुड जस्ट टेस्ट नाइस एज मच एज कितने भी आप फ्लेवर्स उसमें डाल दें। राइट नाउ दिस इज अ फ्लेवरफुल सॉन्ग, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव। द ट्रैक इज चांदनी है, मोहन कानन की आवाज आपके साथ अंटिल 5 o'clock।
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Big Two.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

फ्रॉम के एस चित्रा टू सोनू निगम एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस. इसमें थी करिश्मा कपूर की फिजा का टाइटल ट्रैक आपके लिए. सच अ लवली ट्रैक एंड शी लुक्स सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग एट द कैमरा. और पीछे बहुत बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं जो उनके बाल उड़ा रहे हैं, लेकिन करिश्मा शी लुक्स एब्सोल्युटली डिवाइन एंड सो इज द सॉन्ग. आपके साथ अंटिल 5 आप सुन रहे थे बिग लाइफ ऑल अबाउट हर टुडे माय थीम अबाउट हर बर्थडे.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: वाह व्हाट अ गाना सलमान खान एंड करिश्मा कपूर स्पेशल बिग 106.2 पे. सलमान आई थिंक वाज लुकिंग द मोस्ट हैंडसम इन दिस टाइम ऑफ हिज लाइफ ऑफ हिज करियर एंड ऑफ कोर्स करिश्मा. मेरे को लगता है कि करिश्मा कभी भी इररिलेवेंट हुई नहीं है और ये सब अग्री करते हैं इस चीज से. ऑफ द काइंड ऑफ फैशन शी इज ऑलवेज ब्रॉट इन बिफोर द टाइम. आज भी आप 90s 2000s का कुछ भी यू नो कॉस्ट्यूम देख लो करिश्मा का एंड यू रेप्लिकेट फॉर ऑल द वुमेन आई एम सेइंग इट रेप्लिकेट इन 2026 वो अभी भी इन लगेगा. दैट वॉज द काइंड ऑफ फैशन द काइंड ऑफ सब्सटेंस करिश्मा कपूर ब्रॉट एट हर टाइम. वेल दिस फिल्म वॉज टाइमलेस इट इज स्टिल टाइमलेस. आई एम टॉकिंग अबाउट दिल तो पागल है उसी फिल्म से गाना. द ट्रैक इज भोली सी सूरत एंड इसमें थोड़ा सा यू नो मनाना रूठना ये सब चल रहा है एंड शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित के साथ ये स्पेस. शी गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड एज वेल फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन दिस फिल्म. टेक इट अवे फास्ट ट्रैक सॉन्ग आपके साथ अंटिल 5. दिस इज द बिग लाइफ.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

गॉर्जियस एज एवर करिश्मा कपूर. थोड़ी सी इसमें वो हो गई थी इनसिक्योर अबाउट द रिलेशनशिप मनोज बाजपेयी और रेखा जी के साथ. वो फिल्म इट इज क्लासिक फिल्म एंड करिश्मा लुक्ड एब्सोल्युटली डिवाइन लाइक अ प्रिंसेस. जो दिखाया गया था इस फिल्म में हर एक्सीलेंसी वो दिखाया गया था, हर मैजेस्टी वो दिखाया गया था इनको. एंड जो अगली फिल्म है उसमें भी खूबसूरत लग रही. देयर इज नॉट वन सिंगल टाइम दैट करिश्मा कपूर हैज एवर एवर लुक्ड ओ ब्ला, इफ दैट आई कैन से. इतनी खूबसूरत एंड द सॉन्ग इज इवन बेटर संजू के साथ, संजय दत्त के साथ. शी इज डांसिंग ऑन दिस वन. मेरी नींद जाने लगी है. चल मेरे भाई से गाना आपके साथ. अंटिल फाइव आप सुन रहे हैं करिश्मा कपूर स्पेशल इन माय थीम आवर.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Song of the Hour, brought to you by Insurance Market. Up next on our Big 106.2. Good evening to you. Up soon, The Big Life.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: लाइफ में छोटे छोटे सरप्राइजेस मिल जाए तब भी हमें इतनी खुशी मिल जाती है, और ये तो इतना बड़ा सरप्राइज है जो आपको मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट सरप्राइज एनीमोर. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ये समर. बिग 106.2 इज गिविंग यू दिस अल्टीमेट स्टेके ऑन बिग समर सरप्राइजेस. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस, अल मायरिड, रसल खेमा. गेट रेडी टू यू नो विन दिस फैमिली स्टेकेशन एट द स्टनिंग रिक्सोस अल मायरिड इन रसल खेमा. परफेक्ट टू रिलैक्स, टू अनवाइंड, टू मेक लॉट ऑफ मेमोरीज, टू क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स, टू डू लॉट ऑफ रील्स. यू कैन चिल बाय द पूल, फीस्ट ऑन सम ग्रेट फूड एंड बीट द हीट इन स्टाइल. प्लस आपको चांस मिलेगा डेली प्राइजेस जीतने का. Daily, worth 500 dirhams, including movie tickets and F&B vouchers every single day. Now, participate karne ke liye, all you got to do is tune into The Big Breakfast with Sid in the morning and The Big Thrill with Mansi in the evening. And then, of course, you have to type apne WhatsApp mein jaake BSS, which is BSS, Big Summer Surprises, your name, or WhatsApp kijiye use 054-309-1062 pe, which is 054-309-1062 pe. Big Summer Surprises, presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos, Almirid Russell Khema, only on Big 106.2.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, आपको मिलेंगे 5 सेकंड। मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी, यहाँ पे जो है अपना वो सीरियस मिस्टीरियस साइड जो है साइड पे रखना, फटाफट खेलने वाला गेम है, ठीक है। 3 चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं।
7: एप्पल बियर,
6: ओके,
7: और मटर।
6: नॉट बैड। क्विकली टेल मी 3 ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
7: I like you,
6: अरे तो
7: I like you, your eyes are beautiful,
6: your time ही नहीं शुरू होने दिया, ये मैं कह रही हूँ ये लड़का player है, ये लड़का player है, एक सेकंड नहीं लगा है। 3 ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो। देखा, अब नहीं बताएगा, ये पोल नहीं खुलने वाले हैं, ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में।
1: Keep your evenings electric, 5 PM to 9 PM, The Big Thrill with Mansi, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Hello, hi, good evening to you. Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। ट्रैफिक अपडेट, अल इतिहाद स्ट्रीट पे हैं तो वहाँ पे आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा। अबाउट 10 मिनट्स का डिले है इस वक्त, एक एक्सीडेंट भी हुआ है E11 पे, दैट्स व्हाई इट इज डिलेड। अलनादा के आसपास आपको ट्रैफिक मिलेगा। बात करूँ इस वक्त शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 2 के आसपास ट्रैफिक मिलने वाला है, वहाँ पे भी अलमशार 1 के आसपास आपको मिलेगा, मोहसिना के आसपास आपको ट्रैफिक स्लो मूविंग मिलने वाला है इफ़ यूर शारजा बाउंड राइट नाउ। मूविंग ऑन टू द मेन शेखजाद रोड इनटू दुबई, अल सुकूक स्ट्रीट के आसपास थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा, D86 के आसपास हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा नियर दुबई मॉल। देन मूविंग ऑन टू बर्षा साउथ, वहाँ पे आपको इक्का दुक्का ट्रैफिक मिलेगा, JVC के एग्जिट पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने वाला है। नी द ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट अस ऑन 4305 व्हिच इज 4305.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल on the Big Life, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

शाहिद मालिया के पास, टाइम टू रैप इट अप फ्रॉम माय साइड. बहुत प्यारा गाना फ्रॉम द फिल्म मनमर्जियां. मैं लेता हूँ विदा. मनमर्जी करिए, अपने मन के मालिक बनिए, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा दूसरे लोगों का भी जो मन है उसको पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से अपनी जो कॉन्वर्सेशन है वो करिए. वैसे भी बस चार दिन में मर्करी का रेट्रोग्रेड होने वाला है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, बैरियर्स. अगर आप चार सेंटेंस बोलते हैं तो सिर्फ एक सेंटेंस बोलिए. दैट्स द वे टू कॉम्बैट अ मर्करी रेट्रोग्रेड. वेल, लीविंग यू नाउ, asking Mansi to come in from 5 to 9 with a big thrill and leaving you with this wonderful, very nice song. Main wapas aaunga se, the track is kya kamal hai, film bhi kamal hai, gana bhi kamal hai. Diljit Dosanjh ke awaaz. God bless you and your family. Stay safe, drive safe, keep following us on 106.2 Big FM.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Mansi, ek to garmi upar se Mercury retrograde until the 23rd of July. Ab aaj se lekar July 23rd tak. प्लीज एक्ट डोंट रिएक्ट, क्योंकि आप कहना कुछ चाहेंगे, सामने वाला समझेगा कुछ और आपका रिएक्शन कुछ और आएगा. सो या दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड. वैसे भी आजकल मेरी बात सिर्फ चैट जीपीटी से होती है, तो मुझे तो बहुत ही माइंडफुल रहना पड़ेगा. फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी अंटिल 9. वी गॉट सम फैंटास्टिक म्यूजिक. सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात, द बिग समर सरप्राइजेस. योर चांस टू विन सम फैंटास्टिक प्राइजेस टू स्टार्ट विद अ स्टेकेशन, जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं अ नाइस स्टे at a beautiful property. And uske liye you'll have to register. Karne ke liye sirf WhatsApp karna hai, absolutely free hai. BSS apna pura naam to 0543091062.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill. बस इसी चीज की कमी थी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी आ गया है. मतलब अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज गूगल करो, क्योंकि आप जो कहना चाहेंगे सामने वाला कुछ और समझेगा और आपका रिएक्शन कुछ और होगा. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. नंबर वन, कि आप अपने बॉस की बुराई कर रहे हो बट वो टेक्स्ट बॉस को ही चला गया. या फिर एक एक्स फ्रॉम 2018 रैंडमली आपको डीएम करेगा और बोलेगा हे, एंड देन दैट इज बेसिकली मर्क्यूरी जो सडनली पुराने एक्सेस को जगा देता है. ऑल्सो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, 6 घंटे 16 घंटे आपकी फ्लाइट डिले हो रही है, आपका लगेज किसी और कॉन्टिनेंट पे पहुंच रहा है, ये होता है ड्यूरिंग मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. एंड ऑफकोर्स अगर आपका फोन योर लैपटॉप इज गिविंग अप ऑन यू, ब्लेम द प्लैनेट. सो ड्यूरिंग दिस वन मंथ जस्ट एक्ट, डू नॉट रिएक्ट. That is what I can say from my personal experience, because I've had a lot of exes come back during the Mercury retrograde. Ek aur cheez aap kar sakte hain, go on a vacation, that too on a staycation, absolutely free staycation yahan pe. And this is how you beat the heat in style with big summer surprises. Very very simple. Agar aap chahte hain ki aapka naam draw mein jaye, aapne register karna hai BSS, apna pura naam likh ke bhejna hai 0543091062 par. That's our WhatsApp number. This is your chance to A, be a part of this draw जिससे आप स्टेकेशन जीतेंगे, एंड बी अगर वेकेशन वर्ड गेम आज शाम आप जीतते हैं, यू वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स.
1: पार्टिसिपेट इन द वेकेशन वर्ड गेम कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
2: तो अगर आपने ये जीतना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी है. फिलहाल वी ऑल्सो प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम जो हम 5 से 6 खेलते हैं. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीज़ें आपने बतानी होती है. रोज बोलती हूँ बहुत आसान है, बट जितनों ने खेला है उन्होंने कहा है कि ये गेम इतना आसान है नहीं. अगर आपने ट्राई करना है देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी हैव गॉट 80 स्कोर ऑन द वोकल्स ऑफ दिस वन.

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: All right, big traffic. If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed, फिलहाल 25 मिनट का डिले है मरिव टू मुहेसना। हैवी ट्रैफिक दो अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के पास उम सुकीम। ट्रैफिक ट्रेलिंग काफी स्लो एट द मोमेंट। अगर आप शेख जायद पे हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो 20 मिनट का डिले है। ट्रैफिक मरीना से JBR भी स्लो मूविंग है। इसके अलावा कहीं अटके हैं मुझे बताइए 800-1062 पर।
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
5: अरे को है क्या?
6: Yeah.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill. Now, Mansi, we're playing the 5 second rule. We've got Prashant with us. Hi, Prashant. Good evening.
2: Good evening, Mansi.
3: Hi, hi. आवाज तो बड़ी अच्छी है. लड़कियां तो फोन पे इम्प्रेस हो जाती होंगी आपसे. Hello.
2: ऐसा
3: तो नहीं है, बड़े दिल तोड़े होंगे आपने ये फोन पे हेलो हेलो करके.
2: अरे नहीं, एकदम सुधरे संस्कारी इंसान है.
3: शुद्ध संस्कारी इंसान है. शादी वादी हो गई आपकी सर?
2: जी बिल्कुल.
3: We'll play the 5 second rule. It's a fun game. आपको मिलेंगे 5 second. मैं आपको दूंगी कुछ categories. तीन चीजें आपने बतानी है 5 second के अंदर. रेडी है?
2: रेडी.
0: 5 second rule.
4: Oh yeah.
3: तीन बॉलीवुड एक्टर्स के नाम जो एम से शुरू होते हैं.
2: एक्ट्रेस,
3: एक्टर, एक्ट्रेस. कोई
2: माधुरी माधवन.
3: हो गया माधवन. आर माधवन है वो. वैसे टाइम खत्म हो गया. फटाफट खेलने वाला गेम है. क्विकली नेम थ्री आइसक्रीम फ्लेवर्स दैट आर नॉट वनीला और चॉकलेट.
2: आई डोंट लाइक आइसक्रीम.
3: आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती आपको?
2: नहीं, मैं नहीं खाता.
3: अच्छा, तीन चाट की डिशेस.
2: पानी पूरी, भेलपूरी, रगड़ा पूरी.
3: चाट अच्छी लगती है मतलब. पानी पूरी, भेलपूरी, रगड़ा पूरी. तीन ऐसी चीजें जो शादी के बाद बदल जाती हैं एक बंदे की जिंदगी में.
2: टाइम टेबल अच्छा हो जाता है. बच्चों की केयर करनी पड़ती है. फैमिली को टाइम देना है.
3: बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, ये ग्रीन फ्लैग. बहुत ही शुद्ध संस्कारी, एकदम सूरज बरसातिया की मूवी टाइप्स हैं. तीन ऐसे गाने जिनमें दिल आता है. प्रशांत,
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है.
3: हाँ, ये की है ये. टाइम खत्म हो
2: गया. पता नहीं अब आगे.
3: तीन माधुरी दीक्षित की मूवीज ही बता दीजिए. अब दिल तो पागल है की बात निकली है.
2: माधुरी के यार, भाई इतना मूवी का शौक नहीं मुझे.
3: ना मूवी का शौक है, ना आइसक्रीम का शौक है. उन्हें मोहब्बत कैसे हुई आपसे?
2: कुछ नहीं, सिंपलिसिटी ओनली, दैट्स इट.
3: सिंपलिसिटी, दाल चावल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट?
2: यस, आई एम प्योर वेजिटेरियन मैन.
3: यू एक्चुअली साउंड लाइक द प्योरेस्ट वेजिटेरियन मैन एवर.
0: 5 second rule.
4: ओह यस.
3: चार्ट के अलावा एक भी जवाब आपने मुझे टाइम पे नहीं दिया. बट प्रशांत, मिसाल है आप. ऐसे ही रहना चाहिए शादी के बाद, प्योर वेजिटेरियन. क्या करते हैं प्रशांत आप?
2: ऐसा नहीं, मतलब एक्चुअली मेरा स्टील का काम.
3: वेरी नाइस. एंड इनका जो लॉयल्टी है ना, वो भी स्टील की तरह मजबूत है. कोई आके ब्रेक नहीं कर सकता है. टच वुड. खेला आपने ठीक ठाक ही. आई होप यू हैड फन.
2: थैंक यू.
3: बाय प्रशांत, बाय. या 5 second rule, मैंने कहा ना बड़ा आसान साउंड करता है. इतना आसान है नहीं. अगर आपको लगता है आप प्रशांत से बेटर कर सकते हैं, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill, and of course we're playing the 5-second rule right here on Big 106.2, a part of Funisha Network. Joining us is Mehek. Hi Mehek.
2: Hi.
1: How are you? Kaisa raha din aaj ka?
2: So far so good, it was good.
1: Aaj se Mercury retrograde, do you believe in the Mercury retrograde and all? It's a very Gen Z thing.
2: No.
1: Kisi purane pehchan wale ne out of the blue aapko message kiya aaj?
2: Nahi.
1: Achha, koi phone, laptop kharab hua?
2: Nahi.
1: Kisi ko galat message bheja aapne?
2: नहीं
1: बिकॉज कम्युनिकेशन इधर उधर हो जाती है.
2: नहीं आज नहीं, आज कुछ भी नहीं हुआ.
1: अभी आज शुरू हुआ है, एक महीने बाद देखेंगे. मुझे बताना अगर रैंडमली ऐसा कुछ हुआ तो. बट डू यू यूजुअली रिएक्ट और यू एक्ट?
2: रिएक्ट.
1: यू रिएक्ट ना?
2: यस.
1: हाँ फिर तो एक महीने में कुछ ना कुछ 100% बवाल होगा. चलो मैक, हम खेलेंगे 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: ओके, 5-second रूल. ओह यस.
1: तीन चीजें जो आपके पति करते हैं जिससे आपका रिएक्शन बाहर आता है, गुस्सा बाहर आता है.
2: ठीक है, सब तो अर्ली इन द मॉर्निंग
1: है,
2: जल्दी उठ जाते हैं, मोबाइल पे बहुत बैठते हैं.
1: अरे अरे अरे, मुझे लग रहा था तीसरा बोलेगी हक्के जोर जोर से सांस लेते हैं. तीन शाहरुख खान के मूवीज. टाइम 5 सेकंड, फटाफट. तीन ऐसी चीजें जो येलो कलर की हैं, यू कैन ईट.
2: मैंगो, बनाना
1: और
2: ऑरेंज. ऑरेंज.
1: ऑरेंज इज येलो कलर एंड यू कैन ईट.
2: आई एम सॉरी, लेमन. लेमन.
1: या डेफिनेटली मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड. तीन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर वी.
2: विनोद खन्ना.
1: नाइस.
2: विवेक ओबेरॉय.
1: ओके.
2: विनोद खन्ना
1: हो गया ना, कितनी बार. विनोद खन्ना, विवेक ओबेरॉय, विनोद खन्ना, विकी कौशल, वानी कपूर, बहुत सारे हैं. Three things that we might find under your bed.
2: Mobile.
1: हैं? ओए ओए ओए ओए ओए. फटाफट खेलने वाले ये गेम है.
2: Nothing
1: to do. तीन बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम आता है. HUM.
2: हम दे चुके सर. हाँ. हम आपके कौन हम?
1: Very nice. एक ही जवाब दिया है टाइम पर. इसी के साथ तालियां बजा दी जाए क्योंकि फाइनली एक जवाब तो दिया. बट बाकी कोई भी जवाब महक आपने टाइम पे नहीं दिया. बट आई होप यू हैड फन.
2: नो, वाज फाइन प्लेइंग द गेम.
1: थैंक यू सो मच महक. यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग एंड डू लेट मी नो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. ठीक है, चलो बाय. ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना, एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill. And of course, I have a very important question to ask. What is this concept? You invite me to your birthday and you expect me to pay? Matlab, it is so common, especially in this part of the world. People invite you for birthday brunches and then they expect you to pay. Matlab, gift bhi do, phir kharcha bhi karo. Toh ye party kis cheez ki hui? Right now, I've got Zubair with me. Hi, Zubair.
3: Hi.
2: How are you, Zubair? Kaise hain aap?
3: All good. Badhiya. अभी आज अपना तो क्लाइमेट तो पता है आपको, क्लाइमेट वो एकदम गर्म चल रहा है।
2: ये तो हर साल का है, गुजर जाएगा। यू नो, वक्त की बेस्ट बात ये है कि वो गुजर जाता है। फिलहाल
3: डेफिनेटली
2: जुबैर, अगर आपका बर्थडे है, आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा बर्थडे पार्टी में, आपने किसी रेस्टोरेंट में पार्टी दी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप बिल भरोगे कि आपके सारे फ्रेंड्स कॉन्ट्रीब्यूट करें?
3: नहीं यार, मेरे को ही बिल भरना पड़ेगा। No, ऐसा तो कॉन्सेप्ट अपने इधर तो नहीं चलता है।
2: Yeah, it's a very non-desi concept, but it's become very common.
3: Okay.
2: तो आप ऐसी पार्टी में जाओगे नहीं जाओगे?
3: नहीं, ऐसी पार्टी में तो कहाँ, थोड़ी जाना पड़ेगा, हमको ही बिल पे करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। ऐसी पार्टी में तो नहीं जाएंगे।
2: आई थिंक देसी इसके लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इनविटेशन है, क्योंकि फॉर अस इट मींस होस्टिंग पीपल। तो इफ आई एम गोइंग टू योर हाउस, इफ आई एम गोइंग टू अ पार्टी जो आप ऑर्गेनाइज करें, देन आई अज्यूम के यू विल टेक केयर ऑफ इट, एंड मैंने सिर्फ एज अ गेस्ट जाना है।
3: क्या बोलते, अच्छी हॉस्पिटैलिटी में कंसीडर नहीं करा जाएगा।
2: तो मैं जाऊँ इस बर्थडे पार्टी में कि नहीं जाऊँ?
3: नहीं, मत जाओ यार, क्यों जाओ यार?
2: ना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। जिस हिसाब से मेरा माहौल चल रहा है बैंक अकाउंट से, मैं अपनी बर्थडे पार्टी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी? फिलहाल ज़ुबैर, वी विल प्ले द 5 सेकंड रूल। इट्स अ फन गेम, यू गेट 5 सेकंड्स। आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज, आपने तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर, ठीक है?
3: आई विल ट्राई।
2: ओके,
3: आई विल ट्राई।
1: 5 सेकंड रूल।
4: ओह यस।
2: अच्छा, अभी बर्थडे की बात निकली है, तो सबसे यूजलेस तीन बर्थडे गिफ्ट्स।
3: जैसा कोई मग दे दे कोई
2: मग से यूज़लेस कोई गिफ्ट है ही नहीं इस दुनिया में। पीपल हु गिफ्ट मग्स शुड बी बैंड फ्रॉम योर सोशल सर्कल।
3: डेफिनेटली मग दे दे या वो क्लॉक दे दे, कोई यूटेंसिल्स दे दे, एकदम बेस्ट है।
2: तीन संजय दत्त की मूवीज।
3: वास्तव
2: टाइम खालास।
3: ओके।
2: Three things that are green in color and you can eat.
3: We can eat cucumber.
2: Okay.
3: And we can eat...
2: we can eat whatever, but we have to eat in 5 seconds. It's a very, very quick game. Three things that are white in color and are made out of milk.
3: White in color. Paneer.
2: Or?
3: Then...
2: Malai.
3: Malai.
2: Barfi.
3: Sahi hai.
2: Three things that you take from a hotel room.
3: Hotel room, shampoo.
2: Very nice.
3: Towel.
2: Time khatam ho gaya. Towel nahi le ja sakte hain sir. Towel nahi le ja sakte hain.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: खेला आपने बहुत खराब जुबैर, बट थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अब मैं इस बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। दोस्ती तोड़ दूं क्या?
3: ना, दोस्ती मत तोड़िए, दोस्ती रखिए, बट ऐसी बर्थडे का पार्टी का फायदा ही क्या, जहाँ पे आपको ही जाना पड़ेगा और आपको ही पैसा देना पड़ेगा
2: और गिफ्ट भी देना पड़ेगा। सोचो,
3: जो होस्ट है उसी को ए टू जेड करना पड़ेगा।
2: या आई अग्री विद यू 200%। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी एलियन टू मी। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग जुबैर।
3: 1000%। ओके बाय।
2: थैंक यू। वुड यू गो टू अ पार्टी वेयर इन योर फ्रेंड द host is expecting you to pay, be it a brunch, be it a vacation? Let me know. 800-1062 par while we are playing the 5 second rule. Khelne ke liye same hi number hai, 800-1062.

0: The beat of Bollywood. This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी. Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ.
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money use करो.
1: क्या? सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ.
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से.
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है.
2: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है. इससे

0: लग रहा है।
1: बिल्कुल, ई एंड मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो ई एंड मनी के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Missed your morning buzz?
5: Yes,
4: Suno.
6: It has been stressful working for 15-16 hours a day. Not easy for anyone. And I'm sure my other logistics competitors or even colleagues listening, they would know the pain that they have gone through. Getting better slowly and steadily, yes.
7: Yeah, sabke sar se na thode-thode baal kam ho gaye hain. Over the past 3-4 months. So yeah, round of applause for all the people in logistics. Yeah, for this. Sometimes you gotta just stay your ground, right? You gotta just stay your ground and things will kind of get back to being logical in logisticals, right? So, Avinash,
6: exactly.
7: On that note, let's get down to business. Jab stress badh jata hai aapki life mein, kaam kaaj mein, to what is your go-to? Do you have like a kind of genre of new movies that you watch or what is the theme?
6: I stick to the old school ones. I like stick to Hera Phiri is one of my go-to movies.
7: Yeah.
6: I go to this awkward comedy, which is this Awara Pagal Diwana. I love that scenes of Akshay Kumar.
7: तभी आपने बिल्कुल सही मौके पे छक्का मारा है, राइट? आपने जीते दो ओपन मूवी टिकट्स, अब नाउ इट इज अप टू यू, कोई भी मूवी जाकर देखो।
4: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 35 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 32, बट फील्स लाइक 41, प्रीटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी फिलहाल 68% पर।
4: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill and गर्मियां आ चुकी है. दिन में एटलीस्ट तीन बार हम बोलते हैं हाय कितनी गर्मी है, हाय कितनी गर्मी है. बट वी गिविंग यू द अल्टीमेट स्टेके द समर. इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमारीद इन रसल खेमा. गेट रेडी टू विन अ फैमिली स्टेकेशन एट द स्टनिंग प्रॉपर्टी एंड इट्स द परफेक्ट टाइम टू रिलैक्स, अनवाइंड एंड चिल बाय द पूल, एंजॉय सम ग्रेट खाना, बीट द हीट इन स्टाइल. वेरी वेरी सिंपल, आपने रजिस्टर करना है एंड दैट टू हमें व्हाट्सएप करना है BSS योर फुल नेम टू 0543091062 एंड आवर रैंडमाइजर इज गोना पिक आउट टू नेम्स जो खेलेंगे द वेकेशन वर्ड गेम. हूएवर विंस द गेम, ए आपका नाम जाएगा ड्रॉ में फॉर द स्टेकेशन एंड बी यू वॉकिंग अवे विद कपल मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दिस, सो गेट सेट मैसेजिंग. इट इज BSS योर नेम टू 0543091062. व्हाट्सएप करना है, कॉल और मैसेज नहीं करना है.
0: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अच्छा, मुझे अभी भी पता चला कि जेंजीज में ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है. ये बर्थडे एंड पार्टीज थ्रो करते हैं एंड ऑफ कोर्स दे इवन इफ दे गोइंग आउट एंड ईटिंग तो ये बिल स्प्लिट होता है. और ऐसा नहीं स्प्लिट होता जैसे हम करते हैं कि यू नो पूरा बिल सब में स्प्लिट हो जाए. जिसने जो खाया है वो उसी का पैसा देता है. बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी एलियन टू मी. देयर इज अ पोल व्हिच इज अप ऑन इंस्टाग्राम. अभी कहानी शुरू हुई. एक इनवाइट आया मुझे बर्थडे पार्टी का, अ नॉट सो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि अगर क्लोज होते तो मैं सुना देती, बट अभी मैं सुना ही रही हूँ टेक्निकली. बट यस, सो द इनवाइट सेड, ओ इट्स माय बर्थडे, आईड लव टू हैव यू हियर एंड वी सेलिब्रेटिंग. यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट इज 470 दिरहम्स पर पर्सन. मैंने सोचा कि यार बर्थडे तेरा, पार्टी तेरी, पैसे मैं क्यों दूं. मेरा काम है एज अ गेस्ट वहां तैयार होकर जाना. मैं एक दो स्टोरी एज ऑफ कोर्स मेरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे दूंगी एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट. इट्स योर बर्थडे. सिंस व्हेन हैव वी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग एंड पेइंग फॉर पार्टीज दैट आर होस्टेड किसी और के लिए, किसी और का इवेंट है. एन इवेंट भी नहीं होता यार, बर्थडे पार्टी इज वेरी वेरी क्लोज. इमेजिन कि आपको कल को कोई बोले मेरी शादी में आना लेकिन पैसे तुमको देने हैं. मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि अगर आप होस्ट कर रहे हो तो भाई आप ही करता धरता हो, आप ही पे करोगे. देयर इज अ पोल अप ऑन इंस्टाग्राम, गो एंड चेक इट आउट. वुड यू गो टू अ पार्टी जहां पे आपको गिफ्ट भी देना पड़े और ऑफ कोर्स अपने खाने पीने का खर्चा भी खुद देना पड़े. लेट मी नो. 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. इनफैक्ट आज हमने एक बड़ी कमाल रील भी शेयर करी है. कैरी ऑन जट्टा रिलीज होने वाली है कल एंड वी मेट द स्टार कास्ट, सो दैट रील इज ऑल्सो अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. गो एंड चेक इट आउट. शो सम लव. व्हेन आई कम बैक, योर चांस टू विन अ स्टेकेशन. इट्स टाइम for the big summer surprises.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह बिग थ्रिल मानसी एक थ्रिलिंग एक्साइटिंग फैमिली स्टेकेशन आपका यहाँ इंतजार कर रही है. दिस इज द बिग समर सरप्राइजेस. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू दैट राइट अवे. BSS अपना पूरा नाम लिख के व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर. जस्ट लाइक अनुष्का एंड रौनक. हाय गुड इवनिंग.
2: हाय गुड इवनिंग मानसी.
3: हाय गुड इवनिंग.
1: रौनक ने तो इतने मैसेजेस करे हैं जैसे कि मैं अपने एक्स ने अगर उसने जवाब नहीं दिया एक घंटे के अंदर पूरी चिट्ठियां लिख देती हूँ. लंबे लंबे पैराग्राफ्स कम से कम 100 व्हाट्सएप किए होंगे.
3: 100 से ज्यादा ही.
1: वाह यार.
3: I wanted to be that part of that competition, so that's why.
1: You want to win a free staycation, है ना?
3: Yes, exactly. Yes.
1: What do you do, Ronak? Bombarding us WhatsApp के अलावा क्या करते हैं आप?
3: Finance professional as an accountant.
1: Oh, very nice. What about you, Anushka?
2: I'm also working in the finance department.
1: अरे दोनों finance वाले लोग अपनी staycation हमसे finance कराना चाहते हैं. But you'll have to work hard for this. It's very very simple. आज शाम आपके पास shortlist होने का मौका है. But whoever wins this game is walking away with open movie tickets and F&B vouchers. Very very simple. It's a vacation word game. I'll give you a few words जो related to vacation, to holiday destination. And summer essentials होंगे and there'll be missing words. You have to fill in the blank and guess the right word, okay? But answer देने के लिए आप बोलेंगे big Ronak, big Anushka and then you will answer. I'll ask you to answer, okay? Follow the rules, guys.
3: Sure.
1: Ready, Anushka?
2: Okay, done.
1: All the very best. It's time for the big summer surprises.
0: Participate in the vacation word game contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: All right, the first word this evening is B-E-H. B-E-H. Try
3: Go Ronak. Sorry, Big Ronak.
1: Ha Ronak.
3: Beach.
1: Huh?
2: Yeah, beach.
1: हाँ, जो पहले बोला था मुझे लगा गुस्सा हो गया रौनक. Alright, 1 point to रौनक. Congratulations.
3: Thank you.
1: Alright, word number two आपके लिए है newy-k. newy-k.
2: मॉस्को.
1: NEWY-K मतलब स्पेलिंग हैज लेफ्ट द चैट. मॉस्को. वेरी नाइस. लव इट.
3: गो रौनक. न्यूयॉर्क. बट यू ऑलरेडी आस्क्ड मी. सॉरी सॉरी बिग रौनक. आई एम जस्ट आस्किंग. सॉरी.
1: अरे अरे अरे
3: बिग रौनक.
1: हाँ.
3: न्यूयॉर्क.
1: बिल्कुल सही जवाब. अनिष्का, आई वांट टू नो मॉस्को कहाँ से याद आ गया. NEW मॉस्को है. बट रौनक, कंग्रेचुलेशंस, यू आर वॉकिंग अवे विद कपल मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. बट आपका नाम जा रहा है इन द लकी ड्रॉ. सो फिंगर्स क्रॉस. होपफुली
3: होपफुली
1: यस यू वॉक अवे विद अ स्टेकेशन. ये कहाँ हो, कौन है पीछे, क्या चल रहा है?
3: नहीं, मेरे नहीं है. आई एम इन द कार क्लोज.
1: अंशिका का कुछ चल रहा है पीछे, क्या चल रहा है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, थोड़ी सी मतलब स्पेलिंग चेक कर लेना. ठीक है. हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस. बाय.
3: थैंक यू मानसी. थैंक यू. बाय.

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, मैं हूँ मानसी. This is the Big Thrill, and of course, आपने अभी सुना how Ronak walked away with open movie tickets, and of course, F&B vouchers plus shortlist हुआ है Ronak for this amazing family staycation. It is the big summer surprises, and this has been made possible by our presenting sponsors, Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almirid in Russell Khema. Stunning property है, यही आप staycation पे जाएंगे. And don't forget, कल भी once again I'll be playing the same game at the same time. And आपके पास भी मौका है शॉर्टलिस्ट होने का इन द लकी ड्रॉ एंड विन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. बट उसके लिए रजिस्टर करना जरूरी है. टू रजिस्टर BSS योर नेम, दैट्स इट. हमें व्हाट्सएप करना है 0543091062.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I am Mansi. And बड़ी अच्छी एक रिसर्च अभी अभी मेरे एक दोस्त ने फॉरवर्ड करी है कि डोंट मैरी देम अंटिल यू ट्रैवल विद देम, बिकॉज जब तक आप किसी के साथ ट्रैवल नहीं करते ना, उनकी रियल साइड नहीं दिखती है. इवन इन फ्रेंडशिप्स, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स जो है बहुत थिक हो जाती हैं व्हेन यू ट्रैवल टुगेदर, एंड बहुत सारी दोस्तियाँ टूट भी जाती हैं साथ ट्रैवल करने पर. तो अगर आप जज करना चाहते हैं या फिर टेस्ट करना चाहते हैं, जज इज नॉट द राइट वर्ड, टेस्ट करना चाहते हैं कि कितनी मोहब्बत है, कितनी दोस्ती है, डेफिनेटली ट्रैवल विद दैट पार्टनर, विद दैट फ्रेंड. एंड इफ यू कैन मैनेज ट्रैवलिंग टुगेदर, अगर उस ट्रिप के बाद आप लोग स्टिल प्यार में हैं, स्टिल दोस्त हैं, मतलब यू आर मेंट टू बी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हार्ड व्हेन यू ट्रैवल विद समवन यू डोंट गेट अलोंग विद.

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 34 degrees, low jayega around 32, bahut humidity hai filhal 68% par.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: दो गुड न्यूज है मेरे पास एंड बोथ न्यूज विल मेक यू वेरी वेरी हैप्पी. नंबर वन, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो नो नीड टू क्यू अप. एंड ऑफ द मंथ हो ही गया है तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं है पेट्रोल स्टेशन के बाहर, क्योंकि अगले महीने पेट्रोल सस्ता हो जाएगा. एंड बहुत राहत की सांस आप और मैं लेंगे, क्योंकि चार महीने से ये सिर्फ बढ़ी रहा था. दूसरी गुड न्यूज ये है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, डू गेट इन टच विद अजमान फ्री जोन अथॉरिटी. देव इंट्रोड्यूस द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज जो अपना SME शुरू करना चाहते हैं, विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 dirhams टू गेट योर बिजनेस लाइसेंस. ऑल यू नीड इज अ बिजनेस आइडिया, बाकी दे विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट इंक्लूडिंग योर वीजा, योर बैंक रिक्वायरमेंट्स. बहुत ही क्विक, कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है पूरा प्रोसेस टू गेट योर वन क्लिक लाइसेंस. Any more information, visit afz.ae.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खिलाने पिलाने और जमीन भाई पसारे बोल रहे थे कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: आई कैन बिग 106.2

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स वीकडेज 10 AM टू 2 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट .ae सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूज़िक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.